अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो। ये बेनती कर रहे पंजवें पातशाह सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की साध की बोलते हैं वाह एक कथा कथा होता बोलना वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

बंद दुष्टन के हंता तमह पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शैवजू अवतरा काल पाए

जब आ करख करत हो कबहू तो मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन सठ सब तारा।

सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जमन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल कहो एक बार त्याय है, ताके काल निकट लह ऐ।

दुष्ट छा शबाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा,

अपना जानम जय प्रत पर चुन चुन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग में दऊ चल राखा मुह और ना दल तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब में दास तिहारा।

जब आए सब्रभ को भयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप थे सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा ठाट पयो मैं जोर कार बजन गहा सिर न्याय। पंथ चला तब जगत माय जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नितुटत्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पामहेंगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रूर जलेश। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्गवास रघुबर घरा सगरी पुरी समेत। चौपाई जो ए कथा सुने अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै। विष्णु भगत की ए फल होई आद ब्याद शव सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड बदी प्रथम सुखदावन। त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल भरी लौ लिहो सुधारा। दोहरा नेत्र तुंके चरण तर

सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां

तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारों करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरात स्वामी।

इतनी सेवा प्रवान कर जी, कीर्तन कर दे आप अल्लाह की माफी बख्शनी। आउन भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी कैनेडा वाले, आप जी पितृ बाणी कथा राही जोड़न देना पास प्यास का सरवण करो जी।

0: कच्चा घड़ा सहजे सहजे पानी नाल आप ही खराब हो जाता। यह कच्चा घड़ा है, अपने आप ही बदलता जाता है, अपने आप ही बचपन में बड़ा सोहना लगता है, सहजे सहजे रंग बदलद्या बदलद्या आप ही होर हो जाता। यह तन की यह बढ़ाई काहे भैया
1: भरावा क्यों आखोगे जी? सतनाम श्रे संघ जाते जी, मैं पता थोड़ा कह नू कई बार जी भी करता, फिर आखो सतनाम श्रे संघना नहीं है वाहगुरु कह लगे कदे भी नहीं नाम जप लग्या। काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, दो बार बोलोंदा क्यों तू तो गुब्बारे वांगू फूलिया फिरदा है। जब जदों दस दस मास महीने उर्द मुख रहता, देखो बोल किन्ने मेरे साहबां दे प्यारे, जब दस मास उर्द पुठा मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया। कहिंदा जी मैनू भुल गया, मैं चीज रख के भुल गया, मैं उधर गया सी मैनू भुल गया, मैनू याद करा दी। कई बंदियां दा सुभाव हुंदा याद जरूर है, मैनू कल नू याद करा दी, ये ते याद तेनू करा देणगे, तेनू अपना याद रख भी उह दिन तेनू भुल गया। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਜਿਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ, ਜਬ ਦਾ ਸਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁੱਖ ਰਹਿਤਾ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗਰੀਬ ਬਨਵਾਸ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟੀਐ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ,

के भूपण के भूप हो, के दाता महादान हो, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के दो मानी महा मन हो, विद्या के विचार हो, के अद्वैय अवतार हो, के सिद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की

मेरा सुंदर कह मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली। मैनू पता लग जावे मेरा प्यारा किथे है मैं मिल पवा किथे मिलदा है गुरु दी संगत विच उहदा मिलाप हो जांदा है। सुंदर सोगर सुजान प्रभ मेरा इत्थे विश्राम देना है जीवन दर्श दिखाए ओ पातशाह जी अपने दीदार।

दर्श अघव तुहानू एक शब्द सुना दिया अर्थ नहीं करने सोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभमानी प्रीति है लोभन मैं लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे अमरण से अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर सतनाम श्री सच प्रीत ये अंदर दी प्रीति अंदर दा प्यार है।

ऐसा गुरु नानक दा दर है, बख्शीशा दा दर है, झोलियां भरन वाला दर है। ते कबीर साहब फिर एक बड़ा सुंदर बचन लिखते हैं, 5 मिनट बाकी हैं, तो मैं बेनती करांगा कि पहले दास बोलेगा पिछे भाई गुरमुख माई पाई सारे हाजरी लवाओ, सतगुर सच्चे पातशाह नूं ये तरला करिए गरीब नवाज, तेरा दर ऐसा है तेरे दर तो खाली कोई नहीं जाता, असी ये दर छड़ के होर किधरे नहीं जाना, आओ करो कृपा।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे यो पिंड सा

सहसाद की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु कव सिम रह से तनवंते प्रभु कव सिम रह से पतवंते प्रभु कव सिम रह से जन परिवान प्रभु कव सिम रह से पुरख प्रधान प्रभु कव सिम रह से बे महताजे प्रभु कव सिम रह से

जय मस्कल हो व्यत पारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोड पाव पर हरे गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पाव सूह कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन पर है हर का नाम जपत निस्तर है।

रूप सौ प्रभ सिमरह सदानूप, जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सौ प्रभ सिमर सदा निराद, जिह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह, जिह प्रसाद सुनह करनाद, जिह प्रसाद पेखे बिसमाद, जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सह जे बसना, जिह प्रसाद हथ कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परम गद पावे, जिह प्रसाद सुख सह समावे।

सुरदेव साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुषित हरे साध के संग नरक पर हरे

पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचे उचा मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी सेजन पहे नानक जन प्रव्याम करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी स्वाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जय पै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बस प्रभ संग,

नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग तिथि का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी ये अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात।

परमेश्वर के प्यारे श्लोक करन कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोय अष्टपदी।

प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जनमानिया करण क्रामल तेन मूल पछाणिया जा, करे दे विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तस्मर प्रगटाया, पैद निरभव होए बसाना, जेह ते बजा तस्माह समाना, बसत माहे ले बसत गदाई

निर्मलित भेटत संग्राम गुरु रवे पार ब्रह्म की धरंगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने ने

विश्वास समझना कापे खन सा ब्रह्म समझना के हृदय सब धर्म संत जना सुनहे शुभ वचन सर्व्या पी राम संग रचन जिन जाता तिस की यह रहते सात बजन साधु सब कहत जो जो हो सोई सुख माने करन क्रामन हार प्रभु जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोहि आप सात किया सब सात तिस प्रभु ते सगली उत्पात तिस भावे त करे विस्थार तिस भावे तंकार अनक कला रखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कम निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूरे अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जने आप बुझाए सर्प भूतिया अवतारा सर्वनैण्या पेखनहारा सगल सुमग

सफल जीवन सफलता कासांग जाकने मल लागा रंग जय जय शब्द नाहद बाजे सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजे प्रगटे कपाल महात के माथे नानक कुदरे तन कै साथ नानक कुदरे तन कै साथे सरन जोग सुन

कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभिखे बिमारी प्रभु की हो तद कर हो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोधन दान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

सुख मनी सब त्यो ता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जाने मन कोय। मन्ना सुरतो हवे मन बुद्ध, मन्ना सगल पवन की शुद्ध, मन्ना मुँह चोटा न खाए, मन्ना जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन कोय। मन्ना मार्ग ठाक न पाए, मन्ना पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ना मगन चल पंथ, मन्ना धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन कोय।

असंख जाप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताव, असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंग जोग मन रहे उदास, असंग भगत गुण ज्ञान विचार, असंग सती, असंग दातार, असंग सूरम पक्षसार, असंख मोहल्ले बलाए तार, कुदरत कमन कहाँ विचार, वारिया राजावा एक बार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंधकोर, असंग

पाओ अंतर्गा तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मै नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुभान सदा।

है, अजीत है, अभीत है, त्रमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निर्शरीक है, निर्लम्भ है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, जीत है, पीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, भ्रेक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वभाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वभौणे, अनंगी अनाथेन्द्र संगी प्रभाते, नमो भान भाने, नमो मान भाने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान भाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रभाते समस्ति विभूते, कलंकं बनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र पाने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखी अप्रमी अपोगी भुगते, नमो जोग जोगे स्वंग परम जुगते, नमो नित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देव सत धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाह, नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संग सेनाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्ट इष्ट, नमो तंत्र तंत्र, सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे रूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अदो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता, परंग परम परमेश्वर प्रोषपालंग, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग, अशेदीय पेदीय नामंग अकामंग, समस्त पराजी समस्त तामंग, तेरा जोर चाचरी छंद, जले है, थले है, पीत है, पेह है, प्रभु है, अजू है, अदेश है, भेस है, भुजंग प्रयात छंद, अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ते निधाने, नमास्तवंग नरनाथे, नमास्तवंग परमाथे, नमास्तवंग गंजे, नमास्तवंग पंजे, नमास्तवंग अकाले, नमास्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वेशे, नमो राजराजे, नमो साजे, नमो साहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोगे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृशंग, नमो सर्वग्रसंग, नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीविंग, नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा हृदसिद्धंग निवासी, चरपट छंद अथवा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अल कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वंग पुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद त्वा प्रसाद आद्रुपनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वान्तरमान देव भेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर ततर विराज हे भूतरूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर जन नाम ठाम ना जात जाकर उपरंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पे जागर उपरेख ना राग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम का विहीन पेख तामु न जाए सर्वान सर्वतरमान सदै मनता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक दे भेबना जानी जे बेद और कतेब रूप रंग ना जात पासो जानी के जेब तात्मात ना जात जाकर जन मरण विहीन चकर बकर फिर चतर चुक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेव नाद मूर्त थाप्य सब जय था परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सब रचो स्वयं गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश

करता करते हैं, धरनी धरते हैं, मतेश्वर है परमेश्वर है, करता करते हैं अमृता अमृत है, अजवा करते हैं अमृता अमृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नरपनायक है, सरपायक है, पंजन है, अरगंजन है, रवतापन है, जब जापन है, अकलंग करते हैं, सर्वा करते हैं, करता कर है, हरता है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बास है, जस के जस है, भुजंग प्रयाद छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संग सांद रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्यान, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक श्री शांत अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनि अबोनि नारागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कनिंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजायब घनी में हरियं करें करीमल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भूते स्वयं भव स्वंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भूते स्वयं भव स्वंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तवा प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सिद्धान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण बदि के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रती बेन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप भलिपत ने आप शीसना जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपतंत को नागे पाए पधारे जीत फराय सब देश दिशान को बाजत ढो ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसति ही है राज हजारे भूत भुख भवान के भूपत गौन गण नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजय बनंद गुंद के धाम सिधारे तीर्थ नान दयादम दान संयम ने मनेक बसेखा वेद पुराण कदेव ग्रां जमीन समा जवान सवान के पेखा पवन हार जति जतार सब सुचार हजार को देखा श्री भगवान भजे बिन भूपत ए करती बिन एक न लेखा शुद्ध सबा दुरंद बास सा सना दुरजान दरांगे भारी गुमान भरे मन में कर बर्बत बंग हलेना हलांगे तुवर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलांगे श्री पर श्री भगवान कृपा बन त्याग जहान निदान चलांगे वीर अपार बड़े बरियार बचारे सार की धार बशैया तोर देश मिलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गडान को तोड़न हार सो बात निचक चार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत बिख भवान जपाएंगे जीव जिते जाल में थाल में पल ही पल में सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जातुन पापन गे पुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फ्रैजग सतर सभय अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातब जाऊन त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर भिषण सची पात

अमरे दुष्ट सभा तुम गावो आभात मोहे बजावो सुखी बस मोर परवार सेवक सिख सभाय करतारा मोर अशा निज करत कर सब भैरन को आसंग पूर्ण हो हमारी आशा तोर भजन की रहे ब्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याहू जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सातरु हमारे मारिया है आप हाथ है मुझे उभरे मरण काल का त्रासन भरे हुजो सदा हमारे पच्छा सरिय सुजू करे वर्षा राख लियो मैं राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन मन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश गंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंद जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मोहबत कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गुंचर सूला सबर कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट के बटबट की जान जब उद कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा जब आ कर कर तो हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन सठ सब तारे आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही

काने सतारा समुंद सागर जिन खेन वह तारा कोई होआ कर्म रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम तिहाया बंधन काटन हर स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी। मन रंगिया जावे गल तां मन दी है ना, जिन्हां दा मन लग गया गुरु दे चरण कमलां नाल उन्हां दी सोग दी अग पो नहीं सकदी। उह तां बंद बंद कट्टिया जावे मन रंगिया गया है कोई सोग नहीं है, खोपड़ा लाया जा रहा है। कमाल दी गल जे किधरे तस्वीर वेखो भाई साहब जी, भाई साहब जी भाई तारू सिंह जी दे खून पुरपड़िया चो दोनों पास्यों किवें कन्ना लागू चौंदा आ रहा जे, किवें जलाद ने भाई साहब जी दे केस पकड़े हुए ने, मत्थे दे लागू रंबी रख के मोची वाली थोड़ा ठा ठा मारदा होया किवें पुरपड़िया तक केस लिया रहा है। पर मुख तो गुरु की अमृत बाणी का जाप चल रहा है, मन रापै मन रंगिया होया है। गरीब निवाज कहते जिन्हों का रपया है चरण कमलों सोग की अग नहीं व्यापदी। देवी दास भीम चंद का वजीर है, भीम चंद ने गरीब निवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वाले सू लैण वास्ते भेजिया, तो जिदन आया है ना देवी दास कलगीधर पातशाह जी के दीदार किए तो गुरु का हो गया, तो जदों वापस परतिया ना उस वेले जाके भीम चंद के कोल मेरे कलगिया वाले बाजा वाले सचे पातशाह जी की उस्तत की रज रज के, तो जिहड़ा विरोधी हुंदा है उहनूं उस्तत कित्थे चंगी लगदी जे, अहलकार नूं कहिंदा पकड़ लो इहनूं। जिस वेले पकड़ लिया है मुश्कां बन्न दित्तियां, कह लगा सजा दे तेनूं वड्डियां तों वड्डी देंगा, तू मेरे विरोधी का नाउं लै रहा है। कह लगा पहाड़ी ते लै जाओ, उच्चियां पहाड़ियां ने कहलूर दियां गर्म सलाइया करके लाल अग वर्गिया करके इहदे अखां विच धस दिओ, जिवें सुरमा पाई दा इउं कर दिओ। ते जिस वेले सलाइया पाउण लगे पकड़िया गया चरण कमल जाका मन रापै, तां गुरु खालसा जी देवी दास वजीर ने मेरे कलगिया वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु बोलो धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सचे पातशाह जी दे चरणा दा ध्यान रख लिया। साहबाने चरणा ते सहारिया कष्ट तत्ती वाह नहीं लगन दिती, कोल आया साहबां दे चरणा ते फलूवे पए ने होर शरदा बनाउणी है, सही जे जे कोल होके कहन लगा गरीब निवाज चरणा ते की होया जे, प्यारे भाई दया सिंह गुरु का खालसा कोल है। सवाल होया गरीब निवाज जी कह लगे तेरा दुख असी अपने चरणा ते सहार लिया। आखो गज के सतनाम श्री वाहिगुरु। चरण कमल जाका मन रापै सोग अगण तिस जन न व्यापै, सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपो हर रंगे। भई साधुआं दा संग करदिआं रब दे प्यारिआं दा संग करदिआं नाम दा रंग चढ़ जांदा, संसार तो तर जाईदा। साध संगत दी महिमा बड़ी बेअंत है, तुहानूं इक पौड़ी सुना के ते मैं अगाह तुरन दा जतन करां। सुख राजे हरी चंद घर नार सुतारा लोचन राणी, साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुना। गुरबाणी गुरबाणी धन गुरु का शब्द, सुख तां बड़े ने महला विच राजे दियां सेजां ते, पर राणी नूं जिहड़ा सुख संगत विच लभदा उह महला विच नहीं जे लभदा, जिहड़ा संगत विच चौंकड़ा मिल के लभदा है उह सोहणियां सेजां ते नहीं मिलदा। जिहड़ा गुरु दे लंगरां विच सुख मिलदा उह बाहरले पदार्थां चों नहीं मिलदा।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परिवार परियां शब्द गावणिया।

के मन बसे आवाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जन भुखा।

0: चेंज कर दूं।
1: बिल्कुल
2: एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता। तिना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान धरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल जरवाए। गुरद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी सिद्ध केसा सुवासा संग निभाया तिना समूह शहीदा की कमाई का ध्यान धरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया जी का ध्यान धरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा मान नीवा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाय दितार जियो। श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो। निमाणिया दे मान नितानिया दे ताम नियोटिया दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जिया दे हजूर अरदास बेनती आप जिया ने कृपा रहमत कीती है। इस वेले संगतां वालों परिवारों वालों तुरकी बाणी दे दो श्री खंडपा साहिब की रमता होने लगी है। आप जिया दे सोहने प्रकाश की सेवा हुई है। श्री मुखवाग आप जिया ने बख्श किए हैं। छह पौड़िया आनंद साहब का जाप होया है। कृपा करनी पातशाह जी ओ प्रकाश की सेवा निभाद्या हजूर बाणी पढ़द्या भुल चुक की खिमा बख्शना। पहले श्री अखंड पाठ साहब की सेवा सचे पातशाह जी आप जिया के दरों घरों वरसाए हुए सचे पातशाह जी ओ। महापुरुष संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले उन्हों का जन्म दिहाड़ा मनाद्या होया मिठी प्यारी याद मनाद्या होया। दर करदे प्रीतवान भाई वरिंदर सिंह बीबी शीतल कौर मनकरण सिंह अस्विका कौर समूह परिवार वालों सचे पातशाह जी श्री खंडपा साहब की सेवा करवाई जा रही है। कृपा करनी पातशाह जी समूह परिवार के सीस से मेहरा प्रयत रखना। गुरमत अनुसार मनोकामना पूरिया करनिया महापुरशा दिया मनाईया हुई यादा सफलियां करनिया सचे पातशाह जी ओ। दूसरे श्री खंडपा साहब की सेवा सचे पातशाह जी ओ। बीबी हरजीत कौर वालों शुकराना करद्या सचे पातशाह के परिवार की कतरता वास्ते सचे पातशाह जी अरदास बेनती करद्या होया करवाई जा रही है। कृपा करनी पातशाह जी परिवार की तन मन तन मन धन द्वारा की सेवा सफली करनी। समूह परिवार को एकत्र करना सचे पातशाह जी। गुरमत अनुसार मनोकामना पूरिया करनिया किरत कमाइया विच वाधे पाउणे। पाठी सिंघां नूं बाणी पढ़न दा बल बख्शना। परिवार नूं आपदी गुरबाणी सरवण करन दा सेवा करन दा बल बख्शना। इस वेले रमतां दी खुशी नूं लै के आपदे हजूर देग सज के हाजर है। ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਛਕੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
0: ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਰਤ ਗਵਾ

सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहल विचार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सुसियाणपन लख हो है ताई कना चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै टुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्मे होवन जी हुक्म लै वडियाई

हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्म है जे बुझ जाए ता हूं मैं कहे ना कोए।

एकामाये जुगतव्याये तंचले परवान एक संसारे एक पंडारे खिलाये दीवान जीवत पावे तिवे चलावे जिव हो वह परमान ओ हो विख उन्नद नयावे बहुताए हो विडान

मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वादाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया।

सबके मध्य अल्प निर्वाणी सार के संग उन पहो जल तरिया ना सगल दूत उन साधे जियो तिनकी शरण पया ब्राह्मण मेरा मान तान तज मुहे बंदेरा नाम दान दिजे नान को तिस प्रभ गम गा दे जियो महज महला पंचमा तू पेड़ साख त्रिभुली तू सुख मोहस्तुली तू जल निध तू पीन बुद्ध दा तुद बिन अवर न पालिया जियो तू सूत मणिये सब तू है तू घंटी मेर सिर तू है आद माद आंत प्रभ सोही अवर न कोई दिखा लिया जियो तू निर्गुण सरगुण सुख दाता तू निर्वाण सिया रंग राता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे दुध संभालिया जियो तू ठाकर सेवक पुण्य आपे तू गोपत प्रगट प्रावे आपे नानक दास धा गुण गावे कपूरी निर्निहालिया जियो माज महला पंजमा सफल सो बाणी जित नाम बकाने गुर प्रसाद के निवर ले जानी तन सो वेला जित हर गावत सुनमा आए सो परवाना जो से नित परवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हार जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हो बल तिन संग पछाणा जियो सुन सुन सुन साजन मेरे मित प्यारे सत्संग खिन मैं किन मैं उदारे किलवे काट हुआ मन निर्मल निर्मल मिट गया अवन जाना जियो दुर्गा जोर हर एक बिनो करीजे कर कृपा डुबदा पात्र दीजे नानक प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन तन पाना जियो माज महला वंजमा अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरे जलन बुझी शीतल होए मुनिया सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर बनाना शांत रसन हर नाम करना जल तल नीर परे सुर सुख सरसो पर वेरता कोई न जाए जियो दया दिन दिन सृजन हारे जी जंत सगले प्रत बारे मेहरबान करवाल दयाला सगलत सगले द्रव दया है जियो मंत्रित भवन की दुनारिया करण हर खिन बीता करया गोरमुख नानक दशहरा दे मन की आत बुझाए जियो माज महला पंजमा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधन तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी ताई ता भोके हाकारा जियो तुमरी पेरा दुद्ध बजाना तू मेरी और तू है मेरा माना दुद्ध बिन दूजा अवर न कोई सब खेल तिया तेरा हाकारा जियो जे जा सा दुद्ध पाए जे जल पाना दे ते लाए सब को कीता तेरा होवे नाही कच सारा जियो नाम तय महासुख पाया हर गुण गाय ब्रह्मा मेरा मन शीतलाया गुरपुरे बजी बधाई नानक जिता बखाड़ा जियो माज महला पांचमा जे प्राण सामने अदारा पर जीव गुण गया गाय अपारा गुर ने दान अमृत हर नामा हर त्याय त्याय सुख पाया जियो मनसा था जो करते आवे सास संग जन्म मरण मटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे फिर गुर दर्शाया जियो अगम गोचर कशमित ने जानी साधक से त्याय ज्ञानी खुदी मिटी यू का बोलावा गुरमल गुरम गुरमन में प्रटाया जियो अंत बिनंगल क्रिया निंदाना सुख सहजर नाम बकाना होय कृपाल स्वामी अपना नौ नौ नानक कर में आया जियो माज महला पांचमा सुन सुन जीवा हो तुम्हारी तुम प्रीतम ठाकर दबारे तुमरे कर तो तुम्हें जाना तुम और गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवे कहा कथा सुनत मर सरित होवे पेट संग साध संतन के सदा जपो दयाला जियो आप प्रभ अपना सा सास मारो ए मत गुर प्रसाद मन तारो तुमरी कृपा दे हो प्रकाश सार्व मया प्रतपाला जियो सात सात सात प्रभ सोए सदा सदा साध आपे हो चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक भय निहाला जियो मज महला पंजमा हुक्म बरसन लागे मैं आ सजन संत मिले नाम जपे आशीतल।

देख सबनी जाए जे प्रभ सम्रत वडुज पर नौलित परे तेरे परे भंडारा आदवांत माध प्रभ सोई दु जल विन लाए जे कर कृपा मेर दीन दयाला जाचक साजा जे सर वाला दे दान नानक जन्म मांगे सदा सदा दाए जे माज माला वांजमन ऐते तुम्हें आगे आपे जे जानत सब तेरे तापे तो दबे नवर न कोई करते मैं तड़ उठ तुम्हारी जे रसना जब जब जे स्वामी पारवरा प्रवंत्र जमी जिनसे व्या दिन ही सुख पाया सो जान मन जो हारी जियो नाम बखदे जिन जनते पाया जान मन जन्म जन्म का रोग पाया हर कीर्तन गावे दिन राति सफल है अजकारी जियो जित तार अपना दास बरहर काट काट अंतर पार ब्रह्म नस्कार एक सबेन दूजा एक सबेन और दूजा नहीं बाबा नानक हे मसारे जियो माज महला पांचमा मारदान रता राम प्यारे सर्व दिन अपने बारे आठ भैर गोविंद गुण गाये बिसर न कहो जासा सासा जिय सोए साजन मेत मास मेत प्यारा राम नाम था संग बेचारा साधु संग तरिये सागर कटिये जम की फसा जिय चार पता थर की सेवा पार जात जब अलक बेवा काम क्रोध किल बेख गोर काट पूर्ण हो आसा जिय पूर्ण भाग बहे जस प्राणी सा संग मेरे सारंग पाणी नानक नाम बसिया जिस अंतर परवान ग्रह तदासा जी माज महला पांचा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भक्ति प्रटाया सत संत संग मिल हर हर जपिया बिन से आसरो का जियो जाके ग्रह नाभ निद हर भाई तेस मिलया जिस पूर्व कमाई ज्ञान ध्यान पूर्ण प्रेस प्राप्त

इकसकाया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो गुरमुख हो वे सोई पाए आपे बख्श मलामने आम मेरा ठाकर सच दड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबने थाए सच सच समावने आम।

प्रसाद के निबिले चित लाया तो दुसलाहे ना रजा कबो सच्चे नामे की पुख लामणिया एको वेखा वरना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर केशव तिहा ने वारी सजे सुख समावणिया रतन पदार्थ पलर ते आगे मन मुख अंदा दूजे पाए लागे जो बीजे सोई फल पाए सुपने सुख न पावणिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन बसाए अंदर सदा रहे पै अंदर पै मार परम चुकावनिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सजे गहमणिया सिमर सातर वेद बखाने परमे पूला तत न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुख कमावणिया

यहो मने आरती कोई गुरमुख वेखे मोर्चा ना लागे से हमें सुखे आंदन बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावनिया

रस मेटा गुरमते अमृत व्यावणिया रहाओ। होमे मार वजर कपट खुलाया, नाम मोल गुर बरसा दी पाया। बिन सब दे नाम ना पावे कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुरम ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति जोत मिल मन मानिया, हर दर्शो बाबा बणिया। सिर पालन दो बार जाए, नाम न रहे बहुत बेकार दुख पाई। मन मुख अंधे सूझे नाही, फिर कर कर आए गुरमुख पत पावणिया। गुर प्रसादी सच हर

0: जो सचर ते तेन सचो पावे आपे बचो तावे गुर के सब दसदा सच जाता मिल सचे सुख पावने कूड़क सतना मैं लागे गुर बसे अंत जग निर्मल नाम बसे कट अंतर ज्योति ज्योत में लावने त्रै गुण पड़े हर तत् न जाने बोल मुल मुलो बोले गुर शब्द न बछाने मोह पे आपे के सूचे नाही गुर शब्द ही हर पावने
1: त्रिपद माया मन मुख ना बुझे दूजे पाया त्रै गुण पड़े।

न जाने बिन बूझै दुख पावणिया जात पावै ता आप मिलाए गुर सबदी सहसा दुख चुकाए नानक नावे की सच्ची वड्याई नमो मन सुख पावणिया माज महला तीजा निर्गुण सरगुण आपे सोई तत् पछाणे सो पंडित होई

आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जत सत संजम सच कमावै गुरपुरे नाम त्यावणिया कई अड़े धन परम पुलाई दूजे लागे फिर स्वच्छो ताणी हालत पल दो वै गवाए सुपने सुख न पावणिया पई अड़े तन कंत समाले गुरप्रसादी वेखे नाले फिर गए सहज रहे रंग राती शब्द सिंगार बिमणा बण आवणिया सफल जन्म जना सतगुर पाया दूजे भाओ गुर शब्द चलाया एको रब रहा कट अंतर।

फेर फेर आवण जावणिया आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिलै पौपंजन गुर शब्दी सुख पावणिया माज महला पंजमा कर पहला अंदर

कौन सो कहे कहाए दियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद मिलिए किन विद विछराए, ए विद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित धरता दब त्रैता।

असहाई तिस तत्ती वह न लवै लागै काई तू साहिब सरन सुखदाता सतसंगत जप प्रगटावड़िया तू ऊच अथा पर मुला तू साचा साहिब दास तेरा गोला तू मेरा साचा साची ठुकराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा घर दूजा नित नित दैव संभाली है मूल न मनो विसारी रहो संता संगत पाई है जित जमकै पंथ न जाइए तो सहर का नाम ले तेरे कुल है ना लागे गाल जियो जो समरंदे साईया नरक न सही पाई है तत्ती वो न लगी जिन मन उठा आए जियो सही सुंदर सोहणे सात संग जिन बहणे

जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मान पवंदा कंत हर तेरा थिर हुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की।

हर जी मै कर शब्द सवारण हर साजन सावन सरसी कामणी जिन राम नाम उरहार पादों परमुला भुलानी है दूजे लगा हेत लख चौरासी लख सिगार बनाया कारज नाही केत जितिन देह बिनसी तित वेले कही सन प्रेत पकड़ जलायन दूत जम किसे न देनी भेत छड़ खलोते किने माए जिन स्यों लगा हेत हथ मरोड़े तन कपे स्याहो आसेत जेहा बीजै सो लुणे करमा सुंदराखीत नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत हे पादो नरक न पाइए गुर रखण वाला हेत असुण प्रेम सुम ओ माड़ा क्यों मिलिए हर जी अजाए मन तन प्रयास दर्शन घणी कोई आण मिलावै माए संसाई प्रेम के हो तिन कह लागा पाए वैण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाहीं जाए जिनी चाख्या प्रेम रासे तृप्त रहे अगाए आप त्याग विनती करहो आप त्याग विनती करा लेहो प्रभु ललाए जो हर कंत मिलाइया से बिछड़कत है ना जाए प्रभिन दूजा कोई नानक हर शरण आए असु सुखी वसंधिया जिन्ना मैया हर राय कत्त कर्म कमा

जी दया प्रवान जिसनु देवे दया कर सोई पुरख जान जिन्ना मिलिया प्रभे अपना नानक तिन कुरबान माग सुचे से कांडिया जिन पूरा गुर मेहरबान फलगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगट आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाहीं जाए इच पुनी वड़पागणी वर पाया हर राय मिल सैया मंगल गा।

संसार सागर ते रखियन बहुर न जन्मे थाय जे बाई का अनेक गुण तरे नानक जरनी पाए फलगुण नित सलाई है जिसनु तिल न तमाई।

नाओ कर कृपा प्रभु अपनी जान तूड़ी संग समाओ ज्यों तू राखे त्यों रहा तेरा दिता पैने पैना खाओ उदम सोई कराइयो प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए सो सुजई कित्थे।

सूरज के ही रात चांद अनेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती बीजी जे करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी।

जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझै, कह कह कथना माया लूजे हुक्मी सगला करे आकार, आपे जाने सर्ब विचार। अखर नानक आख्यो आख्यो आप लहे परात, हुवे जिस दात पौड़ी हौं ढाडी वेकार, कारे लाए रात देह कै वार, तुरों फुरमाया।

तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाओ शब्द वजाया। नानक सच सलाहे पूरा पाया, सुध राह गौड़ी गुवारे री। महला पहला चौपदे दोपदे को अंकार, सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत। आजूनी सह भंगुर प्रसाद भउ मुछ भारा वड्डा तोल, मन मत हौली बोले बोला।

ये छुट्टड़ हो ये नारी तू काया रही सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किछ लिया ता मन भला पाया हलत ना सोबा पलत ना टोई अहला जन्म।

हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट बसै हर कोले, हर हर निकट बसै सब जग कै, अपरंपर पुरख।

राम अरस खाते जिनको लिखत लिखै तुरमस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुरमत मैल गई सब दिन की जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जे

बात है त्यों मन मुख गर्भ कलाडी हम जानिया कछु न जानो आ गए जो हर रखे त्यों थड़े हम भूल चोक।

महापदार्थ अमृत राजा बेखम सागर तेज दरे नानक जाको नजर करे गौड़ी मलावना।

गुरबार ब्राह्मण निकटर जान साधु दौर भागी नानक गुर मिटत हर स्यों लिव लागी गौड़ी मल्ला वजा करे तो कर्म दिखावे होर राम की दरगे पाता चोर राम रवे सोई रमण जल तल मैया लेख समाण राव अंतर वेक मुखवत सुनावे जंपर पाता चोटा खावे अनक बढ़ते मह कमावे कुमार किरमे प्रगट हुए संसार अंतर साच नाम रस राता नानक तिस कृपाल विधाता गौड़ी मल्ला वजा राम रंग कदे उतर जाए गुरबुरा जिस देव जाए हर रंग राता सो मन साचा लाल रंग पूरन पुरख विधाता रहो संत संग बैस गुण गाए ताका रंग न उतर जाए बिन हर सिमरन सोनी वाया आन रंग फीके समाया गुरपुरे से भय निहाल कौ नानक गौर भय दयाल गौड़ी मल्ला वजा